0: तो कोई नहीं हाल साया
1: बखान
0: बखान सिर
1: नया
0: कूसी ओनम में से ओनम में से वाले ओनेरो करने बाबिशा
1: मोरो मसिन नोम लुगो ने सु बाबा के ना कोन उंडु है योता खाला
0: आ पेली वेने बा
1: आ पेली वे खरो पता आता
0: ई फानी वा ओले मेला बा
1: ई खरो पता कई नो शूले ली गन नो शूले लन वना गुसिन नो शूले लो मा को पाहे
0: आ
1: ए आ ता गेरे गुये रे कागा है हम रातले आवे खलम गेरे पा हम रातले के होगा हम लोग उठी का मानु एक है
2: मामलोपाना
0: आयो मिया नोवा कोशु खुरे ला
2: मैंने कोशु खुरे ला या एक ही मकिन था ना की ये रखा था कि मैं ये का शर्मा चुकू से
0: आयो या मुरु ऐला नहीं
2: ना रे ना था बारे में इको पाहे होको लगा
0: है आरो वाया आरो पितिवा
2: आरो वाया पाहे
0: उन टा भी नहीं
2: ना रे उम्र ये मेरा खो सा पाहे
0: आ मुरा खो नहीं
2: लोपाना
0: बाला बाला बेरिया हमको सिकिन रे कोम